कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसूम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या तो कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी हरिओम शरण जी की आवाज में। हरिओम शरण

की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए हरिओम शरण जी की आवाज में आपने सुना। चले अगला भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। मिका सुखू जी की आवाज में ये सुंदर भजन।

प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले मिलकर कुमार विशु की आवाज में एक सुंदर सा भजन को सुनते हैं।

एवांस में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले आपकी बार ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आपके बाहर ये सुंदर भजन की ओर हम आपको

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम पे पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना विपिन सचदेवा की आवाज में।

सुंदर सा श्री गणेश चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है, तो चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: भजन श्री गणेश जी का आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक आज बुधवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

सात बजकर प्रोग्राम में दो मिनट व्यतीत हो चुका है। आज बुधवार का दिन 16 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को अन हेलो गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज बुधवार की खास सुबह की प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। शहर उत्तरक से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, आप सभी ये वेलकम स्वागत किया जा रहा है। सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में हमारा प्रोग्राम को भी सुनते हैं, उन सभी को भी स्वागत किया जा रहा है।

चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फिल्म बारिश, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। उदित नारायण, अभिजीत और एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में साधना सरगम होगा। बारिश 1992 का फिल्म है।

उदित नारायण, अभिजीत और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म बारिश, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो वेस्ट में इसका वेबसाइट रेडियो वेस्ट में SPN.NL, उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें होते हैं, मौसमी समाचार और रोजाना अपना डाक हॉरोस्कोप इसी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अपना मोबाइल टेलीफोन पर, मोबाइल फोन पर जरूर आप जाइए रेडियो वेस्ट में इसका वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट की जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अच्छी क्वालिटी साउंड में, और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप मेल कर सकते हैं, और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। कुमार सानू एंड अलका प्रोग्राम में होगा एक गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। मुस्तक 16 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन और आज का खास प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी, एक प्रोग्राम जो बहुत से सुनने वालों बस सुनते हैं घर पर, नौकरी जहां पर करते हैं, काम करते हैं वहां पर भी हमारा प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस सुनते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में और फिल्म का नाम दलाल, उसी फिल्म का ये गाना

एनएल की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के खास प्रोग्राम में पेश की गई है। द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में फिल्म गैम्बलर का गीत पेश किया जा रहा है। मैंने कहा ना संगीत भरी स्टेशन है द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स, इसी रेडियो स्टेशन के जरिए सालों से बस पेश किया जा रहा है और हमेशा की तरह आज भी उसी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं और खास पर देश विदेश में भी सभी को वेलकम। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मॉरिशियस, इंडिया, भारत देश, सूरीनाम देश में भी, अमेरिका में, और हम देख रहे हैं ब्रासिलिया में भी प्रोग्राम सुनने वालों इस वक्त सुन रहे हैं। स्वीडन और खासतौर पर जर्मनी,

एन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस पेश की गई फिल्म इश्क का गीत अभी आपने सुना, जो रेडियो SBS के जरिए पेश की गई है। एक गाना और है, एक गाना और, उसके बाद प्रोग्राम में खबरें पेश होगा। कुमार सानू और साधना सरगम।

कर रहे हैं हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त लेते हुए आपको हम स्वागत कर रहे हैं शुभ सुबह शुभ दिन के साथ गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और यहां से हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। द माइटी मुकेश प्रोग्राम में होगा

ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन।
1: मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मन्ना डे की ओर, और मन्ना डे की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, दिल का हाल सुने दिलवाला, श्री 420 फिल्म का नाम है।

0: वाला दिल का हाल सुन दिल वाला सीधी सी बात न मिल
1: मन्ना डे की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम श्री 420 दिल का हाल सुने दिल वाला गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जिंदगी देने वाली सुन द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद

केसकर की आवाज में गाना पेश की गई फिल्म का नाम था झुक गया आसमान। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम होगा लूटमार।

धनजू बीच की गई जब छाए मेरा जादू। आशा जी की आवाज में फिल्म का नाम था लूटमार। उसी ये फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए। जब छाए मेरा जादू ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मुकेश जी की आवाज में अब की बार ये गाना।

रेडियो बेस पे इसकी सर ये द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म शर्मिले की ओर, किशोर और लता जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 65 60।

रेडियो SBS की जरिए गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। लाइव की जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

फरमा श्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर, कश्मीर की गली फिल्म का नाम होगा और आशा और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा।

श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चलिए और भी खूबसूरत नखमे की ओर हम आपको ले चलते हैं सुमन कल्याणपुर प्रोग्राम में।

गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार एनाशा, किशोर कुमार एनाशा जी की आवाज में ये गाना

सलामत रफीकी आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में।

मुकेश और आशा जी के आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। कुछ पुरानी नखमे आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

Kayak Nikaure, Udit Narayan ki awaaz mein ye gana bas program bhi pesh ki gayi aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein. चले अब की बार सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है हिम्मतवार.

यूएसबीएस के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस का। कुमार सानू एंड अलका

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और अनुराधा पोर्टवल की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम हम तुम्हारे है सनम।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई हम तुम्हारे है सनम फिल्म का नाम अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज

के की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में के एन सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते
1: हैं।
0: कुमार सानू जी की आवाज में जिंदगी एक छांव फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से ये गाना।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार के नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में आपकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और कुमार सानू जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा।

हल्का जीती आवाज में ये गाना बस्तु आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुन वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। आपकी तमाम फरमाइशें तमाम खबरें जो है सस्ती दामों में रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए अनुराधा पोटवाल एन कुमार सानू जेके आवाज में। जरूर ये गाना सुनते ही रहना।

Sano JG Awas Bim. Sudvalu Radio SBS ka website radiosbs.nl usiye website ki zariye apna mobile telephone tablet iPad computer ki zariye hamara program ko aap sun sakte hain aur sabhi internet radio ki zariye aur Sudvalu bas hamesha rozana Radio SBS ka program ko follow kar rahe hain अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो आप सभी के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से

रेडियो SBS के जरिए जावेद अली के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार जो पेश किया जा रहा है

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अलका एंड उदित नारायण की आवाज में।

के आवास में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए क्षेत्र तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। बाबू सुप्रियो प्रोग्राम में

0: काबुल सुब्रियो की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना।

0: छोटे मिया लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवंट वॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रख्तिगे म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: सोंदा 15 नवंबर सोंदा 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय आरटीएम स्टेज ट्वी जनरेशंस एन पोडियम एन अनफॉरगेटेबल अवंट मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit

बशरी मोहम्मद रफी उल्लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई है। चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

मुकेश के आवास में फिल्म दीवाना का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में लता जी के आवास में फिल्म दो बदन का ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुहाना सफर और ये मौसम हसीन गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था प्रेम कहानी। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुरानी नगमे, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये गाना फिल्म प्रोफेसर

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है कुर्बानी, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: Churakje du mera, guria cheli. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny de Jaal, een Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pjarte moet zeker tiho, don't say no. Gezongen door Shabir Kumar.
1: Ik heb ze pjaar niet gekregen. Kripia, plasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: अली का शरारती है। वो तो ऐसे ही मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल है द फिल्म सनक। हाँ तो फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैथ द फिल्म जमाने को दिखाना है, होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jibin Nautiyal en Pritam komt het volgend liedje via Radio SBS in het programma Geeton Ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ये शायद फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitaan Kelleher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Sam Chakro, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

कुमार द फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Durva 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे सुसंग दूर स्टीवन बेन फोंट लीजिए इन het programma Geet om Kelher is gezongen door Arijit Singh. Het komt uit de film Terf en het is Tumse bhi zyada tumse pyar kiya hai.

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस सॉन्ग दूर ग्लेन जॉन एंड कम टू द फिल्म वो लम्हे हाउ द फेदर मैट बर्थडे बैश सॉन्ग दूर यो यो हनी सिंह एंड द फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से देखो ना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा एंड इस गजोंग दो सुनीति चौहान एल अलका याचनिक। गाओ दा फेर्दर मेट uit de film दिल धड़कने दो, अतलीचे गल्ला गुड़िया।

छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अतिथिया नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑप हेट पोडियम बलेव अन अनवर्गेटलिके अवन वोल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रखतिगे म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फन टॉप निवो रुक जाओ दिल दीवाने सोंदाग 15 नोवेम्बर सोंदाग 15 नोवेम्बर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज ट्वी जेनरेशंस एन पोडियम अन अनवर्गेटलिके अवन मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit.

0: हो गए।
1: हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, गजल दूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयुध फिल्म चल मेरे भाई एंड इस गजल दूर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फॉर्म लीजिए इन het programma Gietonke Leher via Radio SBS.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।